महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के, शोला जो भड़ के, पहलू में बेफरार दिल, बेफरार दिल, कैसे

0: तो शम्मा
1: ओ यम्मा यम्मा यम्मा तू परवाना मैं शम्मा
0: ओ यम्मा यम्मा यम्मा मैं परवाना तू शम्मा
1: ओ यम्मा यम्मा

जिन हो का नत्तू घुंगरा सरा इदु वज्रदु इदु नत्तिंदु इदु हवळद्दु इदु पच्चेदु।